प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

मनुख सच दा वणज करन लई आया है। हजूर कहंदे न सच तन वणजो, सच तन संचो कबू ना आवो हारे। संसार ते आके जिन्हां ने सच दा तन नाम दा तन खटिया है, नाम दा वणज कीता है, संसार ते आउणा उन्हां दा ही सफल होया है। जिन्हां ने निरा दुनियावी धन दी दौड़ विच अपना जीवन बसर कर लिया, हजूर कहंदे ने कर औगण पछोतावण। क्यों? इस लई कि इह तां कपड़ रूप सुहावना, छड दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन भाम दे राहे पीड़े अगे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसे खड़ा डरावना, कर औगण पछोतावना। ये अवगुण है क्योंकि निरंकार ने सानू ये अमोलक श्वासां दी पूंजी बख्शिश कीती है। आख्या नौ हिस्से जिहड़े समय दे हन ना ऐ बंदे, ये तेरे वास्ते हन। खुशियां माण, आनंद माण, अपने कार विहार कर। पर श्वासां दा दसवां हिस्सा जिहड़ा है वह हर मनुख ने ईश्वर दे लेखे लाउणा है। जे नहीं लावेगा तो फिर सजा दा पागी होवेगा। अगों लई प्रतीत भी जांदी रहिंदी है ते सजा दा भी पागी होंदा है। इसलिए पाप दी खट्टी

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403 633 2000

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403 7983 यानी 403 7980066

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारा, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 124-4774 ਵੈਸਟ ਵਿੰਸ ਡਰਾਈਵ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-605-6300 ਤੇ ਯਾਨੀ 403-605-6300 ਤੇ।
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो Bobby Dodd @403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 3232nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 8257600983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 या फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124, 4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East, Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईवस्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैल

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मलिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मलिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

पेश कर रहे हैं। एक सवाली ने आके सवाल किया हजरत मौला अली सरकार ने कि सरकार मैंने रोटी दे, मैं बहुत दिनों तो भुखा हूं। जनाब मौला अली सरकार दे एक गुलाम सन जिन्हों का नाम कंबर से। मौला अली सरकार ने कंबर नू फरमाया कि सवाली नू रोटी दियो। कंबर कहता है कि सरकार रोटी संदूक है जी। सरकार मौला अली कहते हैं कि संदूक ही दे दियो। कंबर कहता है कि जनाब संदूक ऊट से है। मौला अली सरकार कहते हैं ऊट ही दे दियो। कंबर कहता है कि जनाब ऊट सौ ऊठा की कतार है जी। मौला अली सरकार फरमाते हैं सौ ऊठा की कतार ही दे दियो। कंबर ने जदों ये गल सुनी वो मौला अली सरकार दे कोल चला गया। मौला अली सरकार फरमाते हैं कि तू मेरे कोल की लेन आया है। कंबर कहता है सरकार के मैं ये सोचा थी कि कितने मैंने भी ना सवाली नू दे दे। जिस वक्त सवाली वो ऊठा की कतार लेके तुर पिया राज किसी ने पूछा कि इन्ने ऊट कितों लेके आया है। मंगता की कहना सुनने वाले लोगों मैं एस एम सादिक का कलाम पेश कर रहा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 1098th Avenue

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue Northeast Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast, Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: रम्मी तालीवाल जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो कंट्री हिल्स ते 36 स्ट्रीट उपर बत्ती यानी 403-589-8636 ते संपर्क कर सकते हो। रॉयल लीपेज रियलिटी तो
1: कैलगरी रम्मी एक को एक धार्मिक रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिन्ना लोकेशंस तो हफ्ते दे सत्तो दिन सेवा प्रदान करते ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171 80 एवन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जा होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैन लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैल

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी अकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www

मन में चितवो चितवनी उद्यम करो उठनी। हर कीर्तन का आहरो हर दी हो नानक के।

वार श्लोका नार श्लोक भीमहले पहले के लिखे टुंडे असराजी की तुनी श्लोक।

0: नानक सतगुर मेल हर सलो। महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोचे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सत्य राम रसा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा कै लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर्ज मैं सो कचन कच महला पहला
1: वड्डी उड़े आई जा वड्डा ना वड्डी उड़े

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नग फिरे जल विस्माद पानी विस्माद अग्नि किडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद।

0: आसन जोग विस्माग जोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्मा सिफ्त विस्मा सला विस्मा दुजड़ विस्माद रा विस्माद निड़े विस्मादू विस्मा देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक भोजन पूरे पाग महला पहला
1: कुदरत दिस है कुदरत सुने है कुदरत

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करता। थोड़ी बिन सतगुर बिन न पाया, बिन सतगुर किन्ने न पाया, सतगुर विच अब रखियां।

नानक हर उते हर उते सलोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा किता दीपां मंडला खंडावर पंडा अंड चेर उत्पुजा खानी सेत जहां सोमे जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता फे करणीता सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जुआरी स्वास्थ तिस तिस दे बाणिया पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पे।

हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाहू है।

0: हर भगत भंडारा
1: भगत भंडारा। श्लोक महला पहला, कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार, कुर मंडप कुर माड़ी कुर बैसन हार, कुर सोयना कुर रूपा कुर पहनन हार।

0: सच कल कुड़वर्तिया कल कल बेताल बीउ बीच पतले गए अब क्यों गए दाल जे कोई तो गए रुति उत हो नान पाए बाहरा पूरे रंग न सोए विच कुंचड़ा ये सरम पावतन हो नान पक्ति जीर पे उड़े सोई ना कोई महला पहला
1: लब पाप दो राजा मेहता कुण हुआ सिकदा काम ने सत पुछी है बह करे विचार अंधी रत ज्ञान में होनी

प्यार धर्मी धर्म करे गवावें मुगे मंगे मुख दुआर जति सदावें जुक्त न जाने छड़ बहे करबार सब को पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जपे महला पहला।

पौड़ी तोर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्ने खसम त्या इनद तक किशनी तुद वेकी जग तू पाया एक मन तू मिले एक आप हो तो दिखवाया पर कृपा ते जाने।

0: पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुखता न होई, तू करता करना मैं नहीं जाहो करे न होई, बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाए लख्या रहा। जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब से सवाले जिनकी ती सो पार पया, कहो नान करते किया बाता जो कुछ करना सो कर या महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सुदर शब्दं प्राकृत।

had many hearts. सगल पवन तारे एक थे किए बिस्तारे, पूरे ओ सर्ब में आप है नरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मरारे, आप ही धारण तारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान, कमने उपमा दे बड़े।

हर मिलिया सलोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ कृत वाहो, जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझेता है। सतयुग रसंतोख का धर्म ग्रंथ वा।

पिंदरा बन में रंकिया, कल मेहंदी अथर बन हुआ नाव खुदाई, अलह पया नील बस्त ले कपड़े पहजे तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद होए सचियार पड़े गुणे तिन चार विचार, पाओ भगत कर नीच सदाए कौ नानक मुख अंतर पाए, पौड़ी सतगुरु विटो मारिया जित मिले खसम संभालिया, जिन कर उपदेश रंजन दिया इन्हीं ने तेरी जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रिया सतगुरु।

हर पाए हर पाए। सलोक महला पहला सिमल रुख सराय रा अत दीर्घत मोचन ओ जे

0: अपराधी दूना निवे जो हंता मेरे गाहे शीश निवाई है क्या थी है जारी दे कसु दे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादू सिल पूजस बगल समादू मुख टूट बेपोखन सारू त्रैपाल तिहाल बिचार गल माला तिलक लीलाटन दोई तोती बस्त्र कपाटन जी जानस ब्रह्म कर्म सब फोकट नीचो करम बहु नानक नीचो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे।

ताणे ताणस ताणे सलोक महला पहला जे मुहका कर्म है कर्म है पितरे दे अगे वसनियाणी है पितरी चोर करे वडिया दलाल के मुसफिये करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे कहले दे।

ज्ञान उतारे धोए महला पहला। मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना।

0: बदे जमपुर जाए महला पहला
1: सब सुत परम है दूजे लगे जा जमन मरना हुक्म है आने आवे जाए खाना।

0: मुक्तु का पाहे महला पहला।
1: पण जमिए पण मिए पण मंगण वे आहो, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो। पांडु मुआ पांड पालिए पांड हुए बंदा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम मैं राजा।

एको सच्चा सो जित मुख सदा सलाही है भागारती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब अके अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है किता आपो अपना आपे ही लेखा छंडी है जरण नाही ऐत जग ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਰ ਬਹੰਡੀ ਐ ਮਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀ।

सुरेंद्रान साह साहान गणिज त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन त्रिन कहत सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत प्रभ दातो दातार पर्याजाचकी किसरना मिले दान संतरेन जिह लग पवजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुस कै बल राम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बल राम जियो बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भव जल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तुत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तुत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903

0: 3083 यानी 4039030483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जा विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

करते हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। मादो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देशा। दंडौत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो हो प्रभु। नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो हो प्रभु। नानक दे कर हथ।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

सुनी, मेरिया अखा खुलिया, हसया मैं इस करके वा परमात्मा, मैं उन्हां छेवां छियां नूं रोवां, किस एक नूं रोवां। कहिंदा हसया इस हकीकत तों आ, उह सुत्यां दा सुपना सी, इह इक मेरा पुत्तर जागदियां दा सुपना है, पर खैण दोनों सुपने ही, उह वी थिर नहीं ते इह वी थिर नहीं। मैं इक बेनती करां, इक सिर्फ घटना लई मन नूं समझाण लई, जो कोई लंघ चुका सुपना है। इस करके गुरु जी ने अज कहा, ज्यों सुपना अर पेखना, जिमें रात दा सुत्या सुपना ते जिमें बाजीगर दी खेड है। ऐसे जग को जान, इस जगत नूं, इस संसार नूं इस तरह जान, इनमें कच साचो नहीं, सुपना भी सच नहीं और खेड भी सच नहीं, खेड भी मिथ ते सुपना भी मिथ। पर मैं आप नूं एक बेनती की, गुरु तेग बहादुर साहब जी इस बरीकी नूं समझो, इनमें कच साचो नहीं। पर ए नहीं क्या भी उदासीनता पैदा कर दिती, फिर की करिए। महाराज कहिंदे नानक बिन भगवान, एक परमात्मा तो बिना, एक परमेश्वर तो बिना, एक रब तो बिना कुछ भी थिर नहीं, बाकी सब अस्थिरता है। ते सब तो वड्डी गल ए, गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे साधो रचना राम बनाई, एक बिन सह एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई। एक दी अर्थी लेके जांदे आ ते दूजा शमशान घाट तो बाद पुछी जांदा अजकल बिजनेस किस तरह है। महाराज गुरु तेग बहादुर कहिंदे वेखो रब दी अचरज खेड, एक सड़दा पे दूजा रहन दी गल्लां कर रहा। साधु रचना राम बनाई, एक बिन सह एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई, स्थिर की है। जिस दिन आपां सतगुरु सब दा भला करन सुख वरताए, जिस दिन इत्थे पहुंचांगे, नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद, ये स्थिर है। नाम रहेगा, गुरु रहेगा, परमात्मा है, परमात्मा दा नाम जपन वाला थिर है। नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। गुरु साहिब दे थोड़े दर्शन सी करिए, सुपना रूप ते स्थिर। महाराज दा एक वचन कहे गुरु नानक साहिब जी दा, ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध गा धरा। फिर सुनियो, ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई एक तुई। देवते नहीं रहनगे, दैंत भी नहीं रहनगे। महाराज कहिंदे चला जाना सब ने, ना देव दान वा नरा, ना इंसान थिर है, ना सिद्ध साध का धरा, ना साधना करने वाले, ना साधना करके पहुंचे हुए। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक कोई स्थिर है, बाकी कोई नहीं। इनमें कह साचो नहीं, नानक बिन भगवान, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई सिर्फ तू ही स्थिर है। इसे करके गुरु जी ने कहा, ना सूर सस मंडलो, आ सूरज नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, जिन्हें आ ब्रह्मांड खंड ने, जिन्हें ये सौर परिवार ने, किसे नहीं रहना। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नै जलो, जिन्ने जजीरे ने, जिन्ने टापू ने, जिन्ना पानी है, कुछ भी नहीं रहना। महाराज कहना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नै जलो, अन्न पानी थिर ना कोई, कोई नहीं रहेगा, एक तु ही, एक तु ही परमात्मा, सिर्फ एक तू रहेगा। तेरी सदीवता ना दादे देहांद आदरी, ना सपत जेर चिमी, मालका ना जज रहनगे, ना मुजरम रहनगे, कुछ भी नहीं। इसे करके गुरु जी ने बाणी विच कहा कि मुकाम तिस नू आखी है, स्थिर ओवे जिन्ने कदी खत्म नहीं होना। मुकाम तिस नू आखी है, जिस सिस ना होवी लेख, असमान धरती चल सी, मुकाम ओही एक। दिन रब चल है, दिने जरा सूरज भी जा रहा है, इन्हें बिनस चंद्रमा रात जरा आंदा वो भी जा रहा है। दिन रब चल है, निस सस चल है, तार का लख पलोए, लखा तारे जेडे दिस देने भी जाने, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए, सदीव रहन वाला केवल एक परमेश्वर। सतगुरा ने इत्थे बख्शिश कीती, ज्यों सुपना अर पेखना, जिवें सुपना राता ते जिवें बाजीगर दी खेड। एक है ऐसे जग को जान, इस तरह तू जगत नू समझ, इस तरह तू संसार नू समझ, इनमें कच साचो नहीं, ना सुपना ना तमाशा, इस थिर ने कुछ भी सच्चा नहीं,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ।

0: कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110, 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो Bobby Dodd @403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

कोटम कालड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जे सौ धोवा तिस उज्जल कहा चिलकना कोटम कालड़ी मस

0: ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰਾਖੇ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ, ਚਵਰ ਤਖਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਗਤ ਵਤਸਲ, ਦੀਨਾਨਾਥ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀਓ ਧੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਚੱਜ ਸਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ, ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ, ਜਿਉਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਲੰਬੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਸ ਨੇ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਲਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਰਾਹੀ ਰਾਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇ दोख कट्टन वास्ते पाप मेटन वास्ते गुरु नानक साहब के रूप में तिलंबे की धरती भाग लाए। जदों इस दी सरां विच पहुंचे तो सेवकां ने कहा जी चेहरे ते बड़ी रौनक है, कोई वड्डा व्यापारी कोई तनाड़ व्यक्ति जापदा सेवक भी नाल ने, बड़ी आओ भगत कीती। जदों प्रशादे दा थाल परोस के सामने रखिया हुण मन विच तां पाप सी, जदों इन्हां ने प्रशादा छक के लम्मे पै जाणा है आराम च हो जाणा है, इन्हां दा माल असबाब लुट के इन्हां दा कतल कर देंगा, पर वह भोला की जानता सी अज समा कुछ होर बनन वाला सी। मेरे सच्चे पातशाह दे सन्मुख जदों थाल परोस के सज्जन ठग ने रखिया ना, ते पिता जी ने उस वेले भाई मरदाना जी नू बचन कीता रबाब छेड़ो, सच्चे पातशाह ने ये पावन शब्द जिस दी विचार अज गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे पावन दर तो जेड़ा साड़ा धर्म दा केंद्र है श्री हरिमंदर साहब तो हुक्मनामे दे रूप विच अज ये बचन प्रगट होए। सूही राग दे विच ये शब्द सतगुरां ने उचारण किया तुलंबे की धरती ते। जदों ये बचन सुने सज्जन ठग जेड़ा सी अंदर तक कंब गया, ये तो कोई दुनियावी व्यापारी नहीं, ये तो कोई रब का नूर है। उस समय सच्चे पातशाह ने उस सज्जन का भला करने वास्ते ये बचन उच्चारण किया। एक बेनती करा, गल करदे आ कई बारी कह देने सज्जन ठग, भावें उन्हें बड़िया ठगियां कीतियां होनगियां, बड़े कतल किए होणगे, बड़े पाप कमाए होणगे, पर केवल एक बारी गुरु नानक दे दर्शन किए, केवल एक बारी गुरु नानक दी मुबारक रसना तो यह बचन सुने सज्जन साध हो गया। कह देने भूमिया चोर, गुरु नानक दे दर्शन करन तो बाद उन्हें चोरी नहीं कीती, असी अजे भी कह देने चोर ठग। अज इन्हां बचना दे विचार दे नाल नाल असां सारिया ने अपने अंदर झात पाउणी, संगत विच भी आउने आ, गुर शब्द भी सरवण करदे आ, विचार भी सरवण करदे आ, पर जे अंदरों अजे ठगियां ते चोरियां वाला सुभा बेईमानी वाला सुभा नहीं ना गया ते सच कह दे आ साडे तो वड्डा भला केड़ा ठग हो सकदा। गुरु नाल ठगियां ही पे करदे आ ना, आने नमस्कार भी करते हैं पर अंदर ठगिया ने, अपने अंदर भी झात पाए हो, मेरी गरीब की भी अरदास करो। पावन शब्द के राही आओ सतगुरां दी विचार दे नाल जुड़ना करिए जी।
0: सतनाम वाहे गुरु साहिब जी, सूही महला पहला कर सेवा।
1: सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी की मुबारक रसना तो प्रगट होए ये बचन जो सूही राग दे विच सतगुरां ने उचारण किते, रागां दे माहर इस गल नू भली भांत जानदे ने कि सूही राग दे छेवें घर दे विच सच्चे पातशाह दे ये बचन मुबारक जगत जीवां दे भले लई प्रगट होए ने।
0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
1: ओ वाहिगुरु परमात्मा दी जागदी जोत जो एक है, एकस बिन नहीं दूजा कोई, जिस दा सारी सृष्टि ते तिन्ना भवना ते एक छत राज है। प्राप्ति किवें हो सकती है? सतगुरु की कृपा नाल ओ परमात्मा की भाल की जा सकती है।
0: उज्जल कहा चलकना कोटम कालड़ी मस।
1: साडे बुजुर्ग इस गल नूं भली भांत जानदे होणगे। अज तो लगभग 70-80 वरे पहला जिन्हां बर्तना दे विच भोजन छकिया जांदा सी ओ कैं दे बर्तन होया करदे सन। जिवें जमाना आया पित्तल दे भांडियां दा, तांबे दे बर्तना दा, फिर स्टील दा रवाज आया, अज मेलमोवेयर ते होर बड़े ब्रांड्स जड़े ने अनब्रेकेबल, कई ऐसियां चीज़ां जिन्हां च असी भांत भांत दे भोजन छकदे हाँ। उस समय कैं दे भांडे होया करदे सन। दास ने भी निके हुंदिया आप उन्हां दे विच प्रशादा छकिया है। देखण दे विच ओह भांडे बड़े लिशकदे सन, चमकदे सन। जदों उन्हां नूं धोणा ना ते जिन्ना उन्हां नूं मांजदे सां, साफ करदे सां, उन्ना ही उस दे अंदरों कालक मैल प्रगट हुंदी सी। धोंदे रहो पर उस दी मैल खत्म नहीं सी हुंदी। सच्चे पातशाह ने इत्थे कै दे बर्तना दा, कै एक धातु है, अज वेखण नूं नहीं मिलदी, अज जमाना नहीं उसका। हाँ, कुछ समय बाद हर चीज़ बदल जाती, कुदरत दा सुभाअ है। पातशाह जी बचन करके समझाते ने, उज्जल कहा चिलकना घोटम कालड़ी मस। कहते भावें कह का बर्तन लिशकता बहुत है पर ज्यों ज्यों धोइए तो ना उस दी कालख नहीं मुकदी, उदा सुभाअ है। बाहरों चमकता है पर अंदरों वो कल है। असल दे विच ए जड़ा उपदेश सी ना केवल सज्जन ठग वास्ते नहीं सी, सारे जगत जीवां वास्ते सांझा उपदेश सी। मनुख कई वेरां बाहरों तां उज्जल होण दा यतन करदा है, बस्तर भी सफेद पा लैंदा, पर जे अंदरों मन करके कालख है ना, ते पिता जी फरमाउंदे ने ओ भी कैं दे बर्तन दी न्याई है।
0: धोतिया झूठ न उतरै जे सौ धोवां तिस।
1: जिन्ना मर्जी पए उस नूं मांजिए पर उस दी कालख नहीं जांदी, भावें जिन्ना मर्जी उस नूं लिशकाउण दा यतन करिए।
0: सजण सेई नाल मैं चलदिया नाल चलन।
1: सज्जन नूं इह बचन करदिया सच्चे पातशाह ने जगत जीवां नूं इक राह दसी, एक गल समझाई। कहिंदे केवल नाम सज्जन रखण नाल कोई सज्जन नहीं हो जांदा। असल दे विच सज्जन दी निशानी की है? सज्जन लफज गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी विच कई थावां ते सतगुरां ने वरत्या। कहिंदे सज्जन दी असल निशानी, सज्जन सेई नाल मैं, मेरे नाल चलदियां नाल चलन, हर समय सहाई होण वाला सज्जन। पंथ जी एक बेनती करां, कदे अपना पिछोकड़ फरोलियो, अपने बुजुर्गां नूं जां गुरु साहिबान भगत प्यारे शहीद सिंह, उन्हां ने साडे जीवन नूं सवारन वास्ते किन्नियां कुर्बानियां कीतियां। सच कह दे हां, कदे नीहां नूं फरोल के वेखो, पाओ इतिहास दे वरके फरोलो। भले बंदे दी एक निशानी दसदे हां केवल एक पंक्ति दे विच। नीहां वल वेख, लीहां वल तुर, बचन प्यारे ने पले बनना, अपना पिछोकड़ पछाणु, नीहां वल वेख ते जो सानू गुरु साहबाना ने शहीद सिंह ने सिखी का राह दसिया ना, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलीए, नीहां वल वेख लीहां ते तुर, उन्हां राहां ते कदम पुट, जेड़े राह गुरु साहब तेरे लिए बना गए ने अपनिया कुर्बानियां दे के। बचन पूरा करदे आ, नीहां वल वेख लीहां ते तुर ते मीहां वांगू वस, जदों गुरु दे दर्शाए हुए मार्ग ते ईमानदारी नाल टुरेगा ना गुरु क्या सिखा, ते सारे संसार दे विच मीहां वांगू वसेगा, जिथे जाएगा उत्थे ही हरियावल पैदा हो जाएगी, कई कई वरियां दा इथों तक के जन्मा जन्मा दा सोका भी मुक जाएगा, मीहां वांगू वस। पर साडा सुभाव पता है की, तुसी तां सारे चंगे हो, मैं अपने वर्गे की गल करां, वड्डे वडेरे बड़ियां कुर्बानियां करके पंथ नूं संभालण वास्ते, असी केवल उन्हां नूं भंडिया ही है, अज भी भंड रहे हां, माफ करना। कौड़ी सच्चाई जे साडे हालात की ने, जिउंदियां नूं डांगा ते मोयां नूं बंगा, जिउंदे दी कदर नहीं करनी, ते जदों शरीर करके कोई चला जावे फिर उहदियां बरसियां भी मनावांगे, फिर बंगा देंगे, उन्हूं याद करांगे, छड गए चले गए, ये साडा सुभाअ है। ज्योंदियां नूं डांगा, मोयां नूं बंगा। सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन,
0: जिथै लेखा मंगी तथै खड़े दिसन।
1: इस पावन शब्द की मुख विचार रहाओ की पंक्ति, सेंट्रल आइडिया, समुचे शब्द का सार सतगुरां ने इस पंक्ति विच लुकोया। महाराज फरमाउंदे ने, जिथै लेखा मंगीए तिथै खड़े दिसन। असल सज्जन ओ ने जेड़े धोखा नहीं देंदे, जेड़े साथ नहीं छड्डदे। जे कोई मित्र चिक्कड़ विच भी डिग पिया ना, ते अपनी बाह वधा के उसनू चिक्कड़ विचों दल दल दे विचों फसे हुए नू भी बाहर कढ लैंदे ने। इत्थों तक महाराज सच्चे पातशाह दा बचन है कि जे उसका लेखा भी होवे ना, ते सच्चे जेड़े सज्जन ने मित्र ने ओ उत्थे भी नाल खलोते नजर आउंदे ने, उत्थे भी साथ नहीं छड्डदे।
0: रहाओ
1: रहाओ दी पंक्ति समुचे शब्द का सेंट्रल आइडिया।
0: कोठे मंडप माड़िया पासो चितविया।
1: मनुख जदों तरक्की करता है ते उदी इच्छा हुंदी है वन सवन्ने भवन बनावा, वन सवन्ने घर होण, दुनिया वेखे, दुनिया आखे भई वाकई बनाउण वाले ने कमाल कीती। मुबारक है, जीवन दी एक लोड़ है सिर ते छत होना, पर केवल सारी जिंदगी भवन बनाउंदा रहा, अपने वास्ते तां एक भवन ही काफी सी ना, पर प्रॉपर्टी इकट्ठी करदा रहा, इन्ना कुछ बना लिया, अपने आप नूं भी हिसाब दा नहीं पता। कई ऐसे बदबख्त ने संसार दे विच जिन्हां नूं अपनी प्रॉपर्टी की भी नॉलेज नहीं कि किन्नी कु मैं इकट्ठी कर दी। बड़े भवन बनाए, बाबा जी फरमाउंदे ने कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां, कहिंदे इसे दे विच ही चित लाया, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी किथे किथे इन्वेस्ट कीता, केवल इसे विच ही जीवन नूं ला दिता।
0: टठियां काम ना आवणी विचों सखणिया।
1: जे भवन दी नीं विचों कमजोर होवे ना, ते किसे वेले भी वह ढह ढेरी हो सकता है। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਸੱਖਣਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
0: ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ,
1: ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰਮਣ ਕੀਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੱਸਿਆ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਯਤ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਯਤ ਕਰ ਲਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਹਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਗਉ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਜਿਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਨਾਰਸ, ਨਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਹਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾ ਲਏ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬਾਗ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਫੜ ਲਏ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਪਾਓ धर्म के केंद्र ते जदों लुट्टां खोआं होण, बेईमानी होवे, गोलक दे पैसे चोरी होण, अजकल खबरां चल रही हैं, सारे जानते हो, देशां विदेशां च रौला पिया, करोड़ां रुपये दीआं ठगियां वज रही ने। तां भगत कबीर जी ने कहा सी, असल दे विच ओह धर्मी नहीं, बाणा भावें धर्म वाला पाया पर वह बनारस के ठग ने। हुण इत्थे केवल बनारस नहीं, कोई भी धर्म स्थान होवे, जे धर्मी होण दा कोई दावा करे पर धर्म पल्ले ना होवे ते वह भी ठग है। वह ठग दिल्ली का भी हो सकता है, देहरादून का भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता। बगे बस्तर पाओ, चिट्टे बस्तर पहन के पहरावा ते सुंदर पहन लिया, धर्मी होण दा दावा भी कर दिता पर पिता जी फरमाउंदे ने तीर्थां ते भी भ्रमण कीता पर जे अंदर पल्ले कख नहीं ना, ते कहंदे फिर वह ठगियां मारदा।
0: खोट खोट दियां खावणे बगे ना कही अन्न,
1: धर्म का पहरावा पहन के ते जिया नाल ठगियां मारे, घुट घुट जिया खावने, जिया नू गल घोट के मारन वाले, उन्हां दी जिंदगी बर्बाद करन वाले भला किवें धर्मी हो सकते ने। कहिंदे उन्हां नू ओ केवल बगले ने, केवल उन्हां दा आवरण बाहरी पहरावा सफेद है पर अंदरों वो कातल ने, अंदरों बेईमान ने, अंदरों जेड़े ने वो ठगियां मारन वाले ने।
0: सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन,
1: इत्थे एग्जाम्पल बड़ी कमाल दी दित्ती सिमल दे रुख दी। आसा की वार दा 14वां श्लोक रोज पढ़ते हो ना, गुरु नानक साहब का ही वचन है, सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवे आस कर जाए निरासे कित, फल फिक्के फुल बक बके काम ना आवे पत। वेखण विच बड़ा सुंदर है सिमल दा रुख, बनावट कुदरत ने बड़ी सोहनी कुदरत ने शिंगारिया, उच्चा भी बहुत है। जे कोई राहगीर सफर नाल थक के कुछ समा सिमल दे हेठ विश्राम करना चाहे ना, नहीं कर सकता, क्योंकि वो जेड़े पत्ते ने उन्हां दी बनावट ऐसी है कि वो छां नहीं देंदे, उदे हेठां आराम नहीं किया जा सकता, बनतर ऐसी है। कई होंदे ने कण छावें बूटे, सिमल दा रुख कण छावां बूटा नहीं, वेखण विच पत्ते बड़े सोहने ने ते जेड़े फुल ने वह भी किसे काम नहीं, खुशबू नहीं उन्हां विच, ते जेड़ा फल है वह फल भी बक बका है, खाण जोगा नहीं। फल फिक्के फुल बक बके काम ना आवे पत, ना उहदे पत्ते किसे जोगे ने। इत्थे भी सतगुरां ने सिमल दी उदाहरण दे के सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन, मैं जन आखिया तोते नू, तोता भी भुलेखा खा जांदा वी ऐसा सुंदर बूटा इहदे फल बड़े सुआदले होणगे, पर जदों वह फल नू चखदा है ते वह खाण जोगा नहीं हुंदा।
0: से फल काम ना आवणी ते गुण मैं तन हन,
1: उस दे फल किसे जोगे नहीं, किसे काम नहीं आउंदे, ऐसे औगुणा दे नाल भरिया होया जीवन। गल केवल सिमल दे बूटे दी नहीं सी, सचे पातशाह मनुखता नू ए हौका दे रहे ने, समझाणा करदे ने कि ओ बूटा भी जे ए जीवन है सिमल दे बूटे दी न्याई है, जिदे पल्ले कोई गुण नहीं, ए शरीर जेड़ा है ए तन जेड़ा है ए केवल हानि दा कारण बनया, लाभ दा कारण नहीं बन सकया।
0: अंदुलै भार उठाया डूगर वाट बहुत,
1: मनुख ने अपने कर्मा दे नाल पापां दी पंड सिर ते चुकी हुई है, अंधले भार उठाया, ज्ञान तो हीणा मनुख उन्हूं अन्ना आख्या। ऐसा मनुख जिसने पापां दी पंड सिर ते चुकी हुई है, डूगर वाट बहुत अजे लाभ राह बड़ी लमेरी है, अजे मंजिल का पता नहीं, ते सिर ते पापां दी पंड जिहड़ी है कर्मा करके नित भारी हुंदी जांदी है।

0: दूर दूर तक मंजिल नजर नहीं आती, राह पेंडा बहुत है। इसे लिए सतगुरां ने सानू अरदास करनी सिखाई, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बाबा मैं कर्महीन कूड़े यार, मेरे कोल ताकत नहीं, मेरे कोल श्रद्धा नहीं, मेरे कोल कोई ज्ञान नहीं कि मैं इस राह ते टुर सकां। ये राह बड़ी लमेरी है, हाँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो सरनाए जी। एक मैनू आस है सतगुरु, मैं आसा रखी चित में, मैनू आस है मेरे कर्म चंगे नहीं, पर तुसी कृपालु हो ना। नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग कृपाले, वो कृपाल भी है, दयाल भी है, बख्शंद भी है। मैं आसा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जीओ। बाबा जी तुसी दयालता दे घर विच आओ ना, ते औगणा दे विच उठ पैंदे हो। हुण जे कमाई वेखीए ते सज्जन ठग दी कमाई कोई नहीं, औगणा दी पंड सिर ते धरी है, पर तुठ पए गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह। उहदी औगणा दी पंड सिर तो ला के ते धर्म दा मार्ग दर्शा दिता। सज्जन ठग नूं सज्जन शाह बना दिता, क्यों कि समर्थ ने सिर ते हाथ रखिया। पिता जी फरमाउंदे ने, समझाउंदे ने कि इन्हां अखां दे नाल जे राह वल तकां ते समझ नहीं आउंदा किहड़े पासे जावां, किहड़े पासे जावां, अखी लोड़ी ना लहां, हौ चढ़ लंघां कित, किहड़े राह ते मैं चढ़ाई करां, किहड़े राह वल मैं टुरां।
1: ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣ ਬਗਿੱਤ।
0: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਰਹੀਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੁੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਐ ਕਿਛ ਪਵੈ ਨਾ ਬੰਧਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਧਰ ਹੋਰ ਛੋੜਿਆ ਧੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
1: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿੱਤ।
0: ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਣੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ ਡਾਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਕੋਈ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਡਾਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗਾਹਕ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਛੰਡਦਾ। ਸੜਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਘੱਟਾ, ਧੂੜ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੰਡਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੜ ਛੰਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੂੜ ਹਟਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਭਲਾ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਉਹ ਧੂੜ ਨੂੰ ਛੰਡਦਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ? ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ? ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਭ ਹੈ ਖੇਪ ਤੁਹਾਰੀ। ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ, अपने अंदर झात पायो। एक निक्का जिहा व्यापारी अपने समान ते धूड़ नहीं पैण दिंदा। असीं तां बड़ा वड्डा व्यापार करन संसार विच आए हां, गुरु की कृपा नाल गुरु ने पूंजी दे के स्वासां दी सानू संसार विच भेजिया, ते असीं अपने मन ते इन्नी धूड़ पै रही है, घट्टा पै रहा है, मिट्टी पै रही है कि असीं नाम जप के कदे नाम रूपी कपड़ा मार के कदी सेवा सिमरन रूपी कपड़ा मार के असीं मन नूं साफ कीता कि मैला ही हुंदा जा रहा है। सच कहां एक छोटा जिहा व्यापारी जे अपने समान नूं मैला नहीं होण दिंदा। असीं तां बड़ा वड्डा व्यापार करन गुरु नानक दी कृपा नाल संसार विच आया भाई। इसे करके उठत बैठत हर हर ध्याई है अन दिन सुकृत करिए। यह सुकृत करनी है ते उठद्या बैठद्या नाम जपद्या बाणी पढ़द्या नाल दे नाल इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की विख्या नू मैल नू नाल दे नाल झाड़दे रहना है, छणदे रहना है किथे ये मैल पक्की ना हो जावे।
1: बन है बसे क्यों पाई है, जाओ लो मनहो ना तजहे बेकार।
0: इस पावन लड़ीवार शब्द दे विच अज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन 1103 अंग दे उत्ते मारू राग दे विच भगत कबीर जी दे वचन। महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन, ए राग मारू दा दूजा शब्द है। बन है बसे क्यों पाई है, जो लो मनहो न तजे बिकार। बड़े प्यारे बचन, भगत कबीर जी का ही एक बचन होर सामने आ गया। ग्रह तज वन खंड जाइए चुन खाइए कंदा, अजहू बिकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरों भवजल नित भारी, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। बिखे बिखे की बासना तजी नह जाई, अनेक जतन कर राखी है फिर लपटाई। जरा जीवन जोबन गया किछ किया ना नीका, एह जीरा निर्मोल को कौडी लग मीका। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल मोहे समसर पापी। हे दात्या जे मेरे वर्गा पापी इस संसार विच कोई नहीं ते तेरे वर्गा दयाल भी कोई नहीं। सतगुरु कृपा करके मेरे जीवन नू सवार देओ। भगत जी समझाउंदे की ने, बने हैं बसे क्यों पाई है। कहिंदे परिवार नू छड़ के जंगलों में डेरे ला ले, शायद रब उत्थे मिल पवे। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन सामने आ गया इसे पंक्ति नाल संबंधित। नौवें पातशाह फरमान करते ने, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संघ समाई। उदाहरण बड़े कमाल दे दिंदे ने, पोहप मद ज्यों बास बसत है। जिवें पुष्प पोहप भाव फुल, फुल दे विच खुशबू टिकी हुई है नजर ते नहीं ना आउंदी, इसे तरह रब भी तेरे अंदर है। पोहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। शीशे विच अपनी सूरत वेखो, सूरत नजर तो आएगी पर शीशे विचों अपनी सूरत नूं तुसी नहीं फड़ सकदे। पोहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर। घट ही खोजो भाई अपने अंदरों लभो, बाहर भीतर एको जानो यह गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीना, मिटे ना भ्रम की काई। अंदरों फरोलना पेगा, असी बाहर मुखी। कई बार एक बेनती करता हूं ना प्यारियो, जिन्हां नूं अंदरों नहीं ना मिलिया उन्हूं मैं गुरुद्वारियां दियां कंधां विचों भी नहीं जे मिलना। गुर शब्द दे विचार नूं हृदय टिकावांगे खेड तां बणेगी। बन है बसे क्यों पाई है, जो लो मनोह न तजे विकार, मन तो विकारा में ग्रसित होया है, तो मैं जंगलों नू टुर पिया, मैं हर संग्राम ते बंगला साहब मत्थे टेकन चलिया। बंगला साहब वाले पातशाह सानू सच दे नाल शब्द दे नाल जोड़दे ने, शब्द नाल जोड़ता सही घर बैठे हां बंगला साहब वाले की खुशी मिल जाएगी। दर्शन करो धार्मिक स्थानों के, ये साढ़े विद्या के स्रोत ने, पर नाल नाल ओ उपदेश भी धारण करो ना, जो उपदेश उस स्थान ते, किसी भी इतिहासक स्थान ते जाओ, उत्थे जो कलावर्ती गुरु साहब ने कृपा की, भगत प्यारिया ने, शहीद सिंघा ने जो कमाइयां कीतियां, उत्थों दे नाल संबंधित साखियां आप भी सुनो, अपने बच्चों नूं भी सुनाओ, तां यात्रा करन दा महत्व है। जे मन दे विच विकार ने ते भगत जी फरमाउंदे ने, गुरु ग्रंथ साहब जी बचन करदे ने, फिर जंगलां विच भटकण दी लोड़ नहीं।
1: जिह घर बन संसार किया ते पूरे संसार,
0: जिन्हां ने बन ते घर अपना ग्रह इक्को जिहा समझ लिया, इक्को जिहा समझ लिया, भाओ अंदरों उन्हूं प्रगट हो गया, वो घर दे विच अपने परिवारक जिम्मेवारियां नूं संभालदा होया, गुरु गुरु करदिआं दसा नौवां दी किरत करदिआं जे जीवन जी रहा ना, ते उहदे अंदरों ही सच प्रगट हो जाएगा। कलगीधर पातशाह दा एक बचन सामने आ गया, पातशाह फरमाउंदे ने, समझाउंदे ने, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो, घर ते जंगल बन, यानी बाहर जाने की लोड़ नहीं, बन से सदन, सदन कहते हैं घर, इत्थे भी बचन आया जै घर बन समसर किया ते पूरे संसार, असल दे विच ओ संसार दे विच जीउंदे ने जिन्हां ने अंदरों भाल कीती, जिहदे लई बन ते घर इक्को जी खेड है। जिवें बेनती कर रहे सां, महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा, जात की जटा जोग को मजन, नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। एक बेनती करा, गुरु दे उपदेश नू अपनी आत्मा दे नाल, अपने मन दे नाल सांझा करो, जोगियां वांग हाथ च कमंडल फड़ ले, शरीर ते विभूत मल ली, गुरमत ने इस दी विरोधता कीती, सत्कार सब दा, आपो अपनी थाए सारे मुबारक ने, पर सतगुरु समझाउंदे ने, नाम दी विभूत अपने शरीर ते ला, नाम दियां कमाइयां, बंदगी दियां बख्शां, एक खुशबू अपने जीवन ते हंडा, तां अगों खेड बनेगी।
1: सार सुख पाईऐ रामा,
0: जीवन दा ए सार है कि परमेश्वर दी बंदगी ही आत्मक सुख प्रदान करदी है। संसार दे विच विज्ञान ने

0: करके अपनी आत्मक आत्मा नू उस रंग विच रंगना करिए जी।
1: रहाओ
0: इस पावन शब्द दी लड़ीवार विचार दी ए शब्द दी रहाओ दी पंक्ति है जी।
1: चटा पसम लेपन किया कहा गुफा मह बास।
0: जिवें हुणे बेनती कीती महाराज सच्चे पातशाह की फरमाउंदे ने कि भावें जटावां नू धारण करके पिंडे ते सवा मल लई जटा भसम लेपन किया शरीर ते भसम दा लेप कर लिया। कहा गुफा मैं बास जंगलां बेलियां दे विच गुफावां विच जा के रहण लग पिया तेरा भला नहीं होना।
1: मन जीते जग जीतया जान ते बिखिया ते होए उदास।
0: जिवें सतगुरु पहले पातशाह ने वचन कीता सी ना मन जीता जग जीत। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह इत्थे वचन करके समझाउंदे ने अपने मन नू गुरु दी भै भावनी दे विच रख गुरु दे आशे अनुसार जीवन नू जीउणा कर एक एक कदम गुरु की भै भावने विच पुटना कर तां जे संसार की विख्या तो मुक्त हो जावेगा।
1: अंजन दे सब कोई टोक चाहन माहे बडान।
0: अज का भावें रिवाज नहीं कुछ समा पहले तक जां अज भी कई इलाकों के अखां विच लोकी सुरमा पाउंदे ने इथों तक कई इलाकों के मर्द भी सुरमा पाते हैं। कदे पाकिस्तान जाइए ना तो पाकिस्तान के अज भी रवाज है बीबिया तो मर्द नेत्रां विच कजल पाते हैं। साड़ियां भैणां इत्थे भी वरतदियां ने हुण तां रेडीमेड कई कंपनियां दे आ गए। हुण इत्थे सतगुरु समझाना की चाहुंदे ने अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माहे बिडान के अखां विच सुरमा ते कई लोकी पाउंदे ने पर सब दी अंदर दी भावना कुछ होर है। कोई नेत्रां दी सुंदरता वास्ते पाउंदा है कोई लोचन जिहड़े ने अखां नूं कहिंदे आ लोचन इन्हां दे विचों जदों सुरमा पाईए कई ऐसे भी ग्रंथां विच जिक्र आउंदा है बई दे विच काम जिहड़ा प्रगट हुंदा है किसी नूं अट्रैक्ट करन वास्ते सुरमा पाया जांदा है। कई नेत्रां दी एक तरह का इलाज करदे ने सुरमा पाया नेत्रां दे अंदरों गंदगी बाहर आउंदी है। हुण सुरमा ते सारे पाउंदे ने पर सब दी भावना वक्खो वक्ख है।
1: ज्ञान अंजन जिह पाया ते लोयन परवान।
0: वेखो सतगुरां ने किन्ना सोहना फैसला दिता। अंजन कहिंदे ने सुरमे नूं ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। श्री सुखमनी साहब जी की पावन बाणी विचों 23वां श्लोक। सतगुरु परमेश्वर जी ने जदों ज्ञान का सुरमा अखां विच पा दिता जदों सतगुरु ने तरस करके ज्ञान की अख खोल दिती ते भगत जी फरमाउंदे ने ऐसे नेत्र ऐसे लोयन भी परमेश्वर दे चरणा विच प्रवान हो गए।
1: कहे कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए।
0: भगत कबीर जी इन्हां पावन बचना दे राही समझाउंदे ने कि गुरु ने ज्ञान बख्शिश करके ये गल समझाई ता मेरे भी समझ विच आ गई।
1: अंतरगत हर भेटिया अब मेरा मन कतहु ना जाए।
0: मनुख गुरु की कृपा नाल अंतरमुखी हो गया अपने अंदर दी विद्या नू गुरु की कृपा नाल पढ़ लिया मार्ग नू पछाण लिया जीवन जीवन की जाच आ गई। ते सच्चे पातशाह की समझाउंदे ने केड़ी कला वर्ती अंतरगत हर भेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए। हुण मेरा मन डोलदा नहीं भरमदा नहीं भटकदा नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हां पावन बचना दे राही गुर शब्द की महत्ता नूं

गुरु ग्रंथ साहब जी बड़े कमाल नाल ढंग नाल समझाउणा करदे ने। नाल ही एक बेनती करा, अजकल जिहड़े दिहाड़े मनाए जा रहे ने ना, श्री अकाल तख्त साहब सिखां दा सरमोर तख्त है, बेनती एक दो बेनतियां जरूर करदे आ। ये जिहड़े दिहाड़े मनाए जा रहे ने, आखिर श्री अकाल तख्त साहब की की महत्ता है? एक सच्ची घटना तुहाडे नाल सांझी करन लगा। अज तो तकरीबन 8-10 वरे पहला एक गुरमुख परिवार हरिमंदर साहब यात्रा ते आया, ते सरोवर साहब के कंडे बैठ के वह कीर्तन का रस माण रहे सन। सरोवर साहब के कंडे बैठे हरिमंदर साहब तो कीर्तन की रसपिनी आवाज वह आनंद माण रहे सन। तो उस परिवार का एक नौजवान बच्चा उसकी अचानक नज़र पई श्री अकाल तख्त साहब वाल। यह मैं सच्ची घटना तुहानू नाल सांझी कर रहा। उन्हें की वेख्या बई एक पतंग गुड्डी ओ श्री अकाल तख्त साहब दे गुंबद दे नाल उदा धागा वलेटिया। उन्हें गुड्डी वेखी ते अपने पिता जी नूं कहण लगा, पिता जी ओ वेखो श्री अकाल तख्त साहब ते गुड्डी। पिता जी ने जदों वेख्या धागा वलेटिया कि गुंबद दे उत्ते ओ गुड्डी जिहड़ी हवा च लहरा रही है, पता नहीं की होया उस गुरमुख के नेत्रां विच जल आ गया, कोई बख्शी रूह गुरु नानक दे घर दी। बेटा कहण लगा, पिता जी की होया, वट हैपन, तुहाडे नेत्रां विच जल। बाप ने जिहड़ी गल कही अज पले बने, कहण लगा, पुत्तर ध्यान नाल वेख, ये गुड्डी नहीं, ये पतंग नहीं, ध्यान नाल वेख, इउं जापदा जिवें इहनूं कईआं ने लुट्टण दा खोण दा यतन कीता, पता नहीं किसे दे हथ विच आंदी इहनूं पाड़ देंदे, लीरो लीर कर देंदे, लुट्ट लैंदे, खसुट लैंदे, पर यह भी जदों श्री अकाल तख्त साहब की शरण विच आ गई ते इहनूं भी पता भी हुण मैं लुट्टण पट्टण तो बच गई हां। कहिंदे हाल है कौम दा जेड़े राजनीतिक अकावां दी झोली च जाके बह गए, जेड़े डेरेदार सरकारी सान जेड़े ने उन्हां दी झोली च जाके बह गए, जदों उन्हां दा जीवन गर्क हो गया ते इउं जापदा है वह सारी लुकाई अज अकाल तख्त साहब की शरण में आ गई। बाबा बड़े धक्के खाधे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अज सारे पुकार करे छेवें पातशाह का चरना ध्यान धर के, ए जन्म तुम

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारा, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले, तुसी पॉल सेखोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिना वरना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है तुद जी से जान जुग में सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हार निरपौ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हरनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ वो सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे बड़ावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब ओ पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मेंडा साई जो तो पावै सोई थीसी जो तू दे सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया तू दरिया ओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेला जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुझ बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरडै पई ले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबी अले मान एक ना चेत स मूड मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ
ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿੰਤੋ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾ ਮਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ।

ब्रह्मा शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपई। हमरे करो हादर अच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम घावो, आप हारद मुहे बचाओ। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर इच्छा निज करद करिया, सा बैरन को आज संघरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे बरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्त हो जा जो करिहो रक्षा। राख ले मुहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते वदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद आरालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा, शिव निरंकार का चीनत नह पेवा। आप यापनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंग प्यो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सागरी सृष्ट दिखाय, चंप आद जुगाद स्वरूप सजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो।
दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करोरण काता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि नहर हो, ताके ताप तन कमे हर हो। वृद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह छ सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंतरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जानियो। श्री अस्पा

सुनते पनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। मुदावनी महला पंजवा थाल विच दिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पईओ जिसका सब सुधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त जी नह जाई नित नित राखो रतारो तम संसार चरण।

श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल।

मत उच्ची मत पतदा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो।

आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन।

हमरै मन चित हरास नित क्यों देखा हर दर्शत मारा। जिन प्रीत लाई सो जानता हमरै मन चित हर बहुत प्यारा। हाँ कुर्बानी गुर अपने जिन बिछड़िया मिलिया मेरा सृजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मिलै कबहूँ अपनी कृपा तार। हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत नावै। तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श लै हर भावै। हम अपराधी राखे गुर संगति उपदेश दियो हर नाम छड़ावै। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोल है तब बिस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अबर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंद मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चूके सब सोग संतापे। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली। पंध जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख। ओ सिफत खसमी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सच्चे पात साहा।

साचे केरे रहा ज्ञान ध्यान सब कोई रवै बंधन बांधिया सब जग भवै सेवा करे सो चाकर हो जल थल महियल रव रहया सोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।